0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2670 मोबाइल नम्बर 98465-2038।
2: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज।

0: वो आंखें जो सिर्फ मुझे देखती थी, वो होंठ जो सिर्फ मुझे पुकारते थे, उन पर किसी और का हक बर्दाश्त नहीं होता।
1: वक्त ही कहां था तुम्हारे पास कि उन होठों पर ठहर सको, उन आंखों में उतर सको। अब मैं किसी और की हो चुकी हूं।

कौन कहता है कि बिछड़ने में मोहब्बत की हार है। जो अधूरा रह गया वो भी तो प्यार है।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: नैना, I have to do this. मुझे जाना होगा। I'm not breaking up with you. नैना, look at me, यार। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे लिए नहीं, हमारे लिए।
2: कबीर, पर मेरा क्या?
1: I promise I won't leave you. Won't let you down. And I love you.

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज। अर्याल मेडिकल हल गोर्खाको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सूचना।
1: अर्याल मेडिकल हल विज्ञान पोलिक्लिनिक सेन्टर नयाँ बजार गोर्खा।

खानु कि न खानु मागेर लानु नसक्नेसँग जानु कि नजानु धन सुख्यो रातले फक